शुद आशुप्तः बर्व चो बर्मश सुमाह बिगोयद के शाह मारा बिकोन के दहशत कसे मर्द दीगर मकोन सुनीदम के दर्शाह हिंदोस्ता के नामे वजा शेर शाहे वजा चुनानस्त दस

अगर अस्प हरदो अजामी देहद वजा पस्तो राखा नह बानु कुनाद सुनीदई सुखन राहमी शुद्रवा ब्यामद बशहर शाह हिंदोसता निशस्तांद बररोद जमना लब आब बेबुरदांद बादह खुरदंद कबाब पसे दो बर आमद शबे चूसियाह रवां करद आ बस।

या श्रेष्ठ गर्दन जैशाह ब अबरू चो अबरे बहारा कुनाद ब मैगा चो अस्तीर बारा कुनाद रुखे चू लासीहे देहद माहेरा बहारे गुलिस्ता देहद शाहरा बाबरू कमाने शुदा नाजनी ब चश्मा जनद कैबरे कहरगी ब मस्ती देहद हाम चुनी रुए मस्त गुलिस्ता कुनद भूम सोरीद दस्त खुशे खुश जमालो कमालो हुसान बसूरत जवान अस्त फिक्रे कुहान यके हुसन खां बूदो जाफगा बदानश हमी बूद अकलस जवान कुनद दोस्ती बाहक मह यक दिगार के लैली व मजनू खिजल गस्त शार चो बा यक दिगर हम चुन

त्वप्रसाद तोमरछंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूपा पार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भू ब्रतमान दस चार चार निधान।

निबखानी नाहि असन प्रपंच मन भूल अनियत है। भूम के बसैयता है बूजरी के जैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है। फल के बछैयता है बांदरी के जैया कहे आदस फिरैयत है तभूत के पछानी है। जल के तरैया को कंगेरी सी कहत जग आग के भचैया सो चकोर सम मानी है। सूरज सिवैयता है कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ तिंदुआ कहत सब कौल नाभ

न्योलिकरम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठंड न बहत है। मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद योग देव नेत नेत कह कहत है। ना जत फिरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करो करत है। चंद्रमात शीतल न सूरज तपत तेज इंद्र सोन राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेद जारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल मास के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है।

मोहन दी मदारक ते सुनी कुमारक ते अंसाव तारक ते काल बस भय है पीर ओ पिकंबर कते गाने ना परत ये ते भूम ही ते होए के वेर भूम ही मिलाए है जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई घोसलो चलत है बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के तप को दलत है मान से महीब औदलीप कैसे छत्रधारी बड्डो अभिमान भुज दंड को करत है दारा से दिल्ली सर द्रोजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है सिज दे करे अनेक तोप जी कपट बेस पोसती अनेक दानी वावत है शीश को कहा भयो मल जो पे काटत अनेक

जैसे एक स्वंगी कहू जोगी या बैरागी बने का बहु संन्यास भेष बन कह दिखावई कहू पौन हारी कहू बैठ लाए तारी कहू लोभ की कुमारी सो अनेक गुण गावई कहू ब्रह्मचारी कहू हाथ पै लगावे बारी कहू दंड धारी हो के लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार गीदर पुकारे पर शीत काल कुंजर ओगदहा अनेक दाप कार ही कह भयो जब कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टक उठारन सो मारही कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ का।

ताप के सहित जो पे पाई है तापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए ते जो पे पायत अजाप देव पूजना सदीव तुही तुही उचरत है। नभ के उड़ते जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है।

करता करीम सोए रस करहिम ओई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही किसे सब ही गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहो राम सीत सोई पूजा निवाज ओई मान सब एक पय अनेको भ्रमाव है देवता देव जज कंदरब तुरक हिंदू न्यार न्यार देशन के भेष को प्रभाव है।

उठे न्यारे न्यारे हुए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भज, केते अच वछ हो।

तेज जीव तेज में अतेज जस तेज रीन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है कित गंग बासी कित मदि नामका निवासी के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हरे जो अजार भूज हारे पाहन चढ़ाए हरे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हरे मड़ी मटली पहारे भीतन लगाए हरे छापसी गाए हरे गंधर्व बजाए हरे किन्नर सब पच हारे पंडित तपंत हारे तापसी।

मोहं न मातंग न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं अद्वैखंग अभेखंग जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं गच्छयाद अद्वै अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आद भंगे।

देवर चंडे ब्रह्माथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायण नरंकं नरूपं नरहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं।

कहूँ राजसी सात की तामसी हो, कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो, कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जोगतं, कहूँ भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं, कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो, कहूँ जच विद्या धरे।

सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं छुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव्य रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूप।

सभाख्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतंग कहूँ शस्त्र धारंग होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज भाख्या कहूँ बेदरी तंग कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नाग बानी कहूँ गारडू।

डोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय शत्र मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र प्रात नहीं मित्र मात, जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं व्योतबान, जय जात पात नहीं शत्रु मित्र, जय नेह गेह नहीं चिन्ह चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम भेख, जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात, जय नाम थाम नहीं वर्ग ब्याद, जय रोग शोक नहीं सत्र साध, जय द्रास वास नहीं दे नास, जय आद अंत नहीं रूप रास, जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आस नहीं भूम भुगत, जय काल व्याल कट्यो न अंग, अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग, जय नेत नेत उचरंत वेद, जय अलख रूप कथत कते, जय अलख रूप आसन अडोल, जय अमित तेज अक्षय अतोल, जय ध्यान काज मुंजन अनंत, कई गल्प जोग साधत दुरंत, तन सीत खाम बरखा सहंत, कई कल्प एक आसन बितंत, कई जतन जोग विद्या विचार साधंत, तद पावत न पार, कई ऊर्ध बाह देशन भ्रमंत, कई ऊर्ध मध्य पावक झुलंत, कई सिमृत शास्त्र तुचरंत वेद, कई गोख काव कथत कते, कई यज्ञ होत्र कई बोनहार, कई कर्त कूट मृत को आहार, कई कर्त साक पै पत्र भच्छ, नहीं तदब देव होवत पतच्छ, कई गीत गान गंधर्व बरीत, कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत, कहूँ वेद रीत जगे आद करम, कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीर्थ धर्म, कई देश देश बाखार टंत, कई देश देश विद्या बड़ंत, कई कर्त बांत बांतन विचार, नहीं नैक तास पायत न पार, कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम, कई यज्ञ होत्र कई देव।

कहूँ जोग धर्म कहे सिमृत शास्त्रत उचरत सो करम न्योली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ गर्त ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जो करीत कहूँ बिरद चार कहूँ गर्त जच गंधर्व गान कहूँ धूप देव कहूँ अर्घदान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ कर्त शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जब

बिन भगत सगत नहीं भरत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित लीन फोकटो सर्व धर्मा विहीन।

दीन जमीन जमाजे रचयं सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख दुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भयं जे खेद न भेद न छेद छयं जय ज अतन पात न मात पितं जे रचयं छत्री छत्र छितं जय राग न रेख न रोग बणं जय द्वैख न दाग न दोख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभवत आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल रिपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उद भुजंग किये देव देव सराद पितंग खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जात न पात न जोत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जंप किन्नर जछ जुवंग नर नार नपुंसक जाहि किए गण किन्नर जछ भुजंग दिए गज बाजर थातिक पांत गणंग भव भूत भवेख भवान तुवंग जय अंडज सेतज जे रजंग रज भूमा काद पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली वन जास कियो फल फूल कली भू मेरा काश निवासितंग रज रोज एकादश चंद्र प्रतंग दुत चंद दिनी साय दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई।

समस्त सिद्ध वृद्ध दास सदैव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, भंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्धता, अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानी है, सदैव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है, न राग रंग रूप है, न रोग राग रेख है, अदोग दाग दग है, अभूत ब्रह्म फेक है, न तात मात जात है, न पात चहन वर्ण है, अदेक सेक फेक है, सदैव विश्व भरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्वभरण है, जिमी जमान के विगे सदीव करम भरम है, अद्वेक है अभेक है, अलेख नाथ जानी है, सदीव सर्वठौर में विशेख अन्न मानी है, न जंत्र में न तंत्र में न

अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न गाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नरको स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध।

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेक है बलि रूप राग रंग है न द्वैग है न भेग है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानिए अभूम अभिज है सदा छिज तेज मानिए न आद है न व्याद है अगाध रूप लेखिए दुख है अदाग है अच्छे प्रताप देखिए न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र है न चित्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है न काम है न

गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति बनस्पति जपस्सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्तपि विशेखिये बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिये अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात बात मंत्र मित्र सत्र सनेह जानिए सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में।

रूप राग ना रेख रंग न जनम मरण विहीन आदनाद अगाध पुरख सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र न तंत्र जाको आद पुरख अपार हस्त गीड विखे बसे सब ठौर मैं निर्धार जात पात ना ताद जाको मंत्र मात ना मित्र सर्व ठौर विखे रम्यो जे

सोत सोत हटे सब सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर करब पड़त पड़त थके महाकव गर्द गाड़ अनंत हार हार कहियो सबू में।

चक्र चहन न बरन जाको जात पात न फेख रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व घायक सर्व ते अन भंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंध दयाल स्वामी याद देवा पार दीन बंध प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार बरन चहन चक्र जाको चक्र चहनाकार जात पात न गोत्र गाथा रूप रेख न बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भूव को बरन दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरक प्रमाथ दुष्ट हरता सृष्ट करता जगत में जय गाथ भूत भव भवेख।

भूमका जले थले मेहमानिये जह नाम। दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम। दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद। मित्र बालक शत्रु गालक दीन दयाल मुकंद। अघाओ दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल। दुष्ट हर नंग पुष्ट कर नंग सर्व के प्रतपाल। सर्व करता सर्व हरता सर्व के अन काम। सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम। सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण। सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन। सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार। दुष्ट हरता विश्व भरता आदि रूप अपार। दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड। भूमका जले थले मह जपत जाप मंड। श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार। आदि देवा पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार। अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र। वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र। जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार। वेद वेवना पावही शिव रुद्र ओमुख चार। कोटेन्द्र उपेन्द्र व्यास सनक सनत कुमार। गाय गाय थके सपय कुंच कृत वे मुख चार। आद अंत न मध्य जाको भूत भव भवान। सत दुआ पर तृतीया कल युग छत्र काल प्रधान। ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार। हार हार थके सपय नहीं पाइये तह पार। नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत। ध्याय ध्याय थके सपय कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच बछर पार। सोत सोत थके महासुर।

एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहाँ श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कहा जी तब कहा मरण है कवन सुर कहन तब कहा को सुमर को मूड कर कहा कर को सुमर को मूड कर कहा तब को निम्न कर जस कवन कवन बाव कर दर जस कवन जो कब भोग है धर्म कर कब कर को सुमर कवन कहो सुमर कर सुमर कर है तब को कहो कहन कर सुमर सुमर तब को कवन कहो तब को मंत्र को कर कवन को कहा रोम कर जो कवन कर सुमर कर कवन जब रोकी रक्षी कवन कहो तब रोकी दो कर कवन कहो तब तुम्हें कवन दो कवन कृष्ण को पुष्ट है कहाँ से कवन विचार कवन कृष्ण को पुष्ट है कहो सकल विस्तार को बोला है कहो कहाँ स्कर को भरम है कहाँ भरम को ना सकल में कहाँ चिदंबर की चोचास कहाँ चेचित काल जो बड़ा कहाँ चिदंबर ने पसंद जो बड़ा कहाँ कहाँ के मान कबरों की सुख की दुनिया धर्म की रूप की दुनिया कहाँ धर्म को सुख रात को प्रवाह कहाँ जो को सार को दर्द है कि तुम्हें कौन

0: कीट पतंग पुरंग भुजंग भूत भेद भवंग बना हुए देव देव भेद भवंग बना भेद देव देव भरे माने देव भेद ब्रह्म देव गान से भेद प्रहात नाए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पाए योग बोले प्रेम प्रभाव आए आप अनंत प्रसाद देव सो भूत भाग भगवान भाग रहे सो भी नमन तमा भाग गया दो भई चरण सत है भाग तो लोग के बचा है ताज में तो लोग के प्रभाव है दीन दयाल दयाल सदी सुंदर दीन दयाल दयाल काम क्रोध न लोभ न मोह न रोग राम रोग न दोग न बल है देह बीन सुदेह बोधन देह दृढ़ तक लक्ष्य है बोधन देह जान को देह दा जान को देह दा जमीन को देह दे मान को दा है दा हे को डोल को है मान बुद्धि सब सुन बल से रिपोर्ट को बदल तो है तो सुन तो रोग न दे और लोग न दे जब जो बन दे बन दे जब जो बन दे जब जो बन दे जब जो बन दे जब जो बन दे जब जो बन दे जब जो बन दे जब जो बन दे जब जो बन दे जब जो राखत है अपनो करदा कर बाप शंभू है बेटन बाप दया और की बात भगवान रहे दुख तो सो पेट नी के पट बीत बचाओ है सो पेट नी जय जब जन सो दान दे बाप देव तुम सब ही सुर दया है भूम पे रास में दल की कदर जब जब जन सब सरने आवे जब जन सब सरने आवे पास के नहीं पार प्रभा हूं को ने आए ने दर बेदर प्रभा को न के सब ही सुपीर सुहार पर हर हर ही आविया सुहार पर नार से तो मन से तो मन आले सब तो सो मिल ना जो फिर दिन तेरे को मेरे को मैं तो बाहर पर हर हर ही आयो सुहार पर हर हाथ आयो पाए सके नहीं पार उमा पद से दुखाने सके नहीं बंदा आयो ध्यान सर्व सने को मन में दे आयो बंद को जर हो पाए को तुम्हारे बंदे को वेद पुर पाए जब देव कुरान वेद वेद पुर पाए तो जहार में वेद पाए सके वेद पुर वेद वेद वेद ने पाए तो पुकारे पुके तदाग न रूप न रे रे रंग न ताक रसाग न रूप न रे रे अदसा ना दस कम सब कद वे के जब युद नहीं कुलता रे जदी रत बोट की आशे नान दे बोधी रत बोट की आशे दे दीरे वगर बे सब बोधन के दरे नमिले हर प्यारे बोधन के दरे ले हर प्यारे आसन कोट करे स्थान करे भोनास कोट करे दीन दयाल काल बजे बिना ने भुवन के नाम से धारे नाम से धारे त्वा प्रसाद हत्र के तलैया छत छत्र के धरैया छत्र धरैया छत्र धरैया मन सब जन के सहारे में चल के भैया मन मान के बढ़िया वैसे मन के भैया न के भैया मजाल है देवतिया है कटैया जा मजाल है जोत के जतैया विरुद्ध के मिटैया जो मान के बुद्ध के लवैया मन के मान लैया के मान बुद्ध के भई हम के ज्ञात मन बुद्ध न है दाता देव काल हम के काल हम काल हम के काल है काल मान पूर बिन बार बार गुलाह माल रे को कर दे गुलाह का बे तेरा नाम गुण है जो जो को संदे पते बंग के बंगाले फिर बंग के फिर बंगाले दिल्ली के दिल वाले तेरे जगम वाला तली है रोग के रोगले में आते से हम के लोग मेरे बंग से बुद्ध दे बाप पुंज को मिल बना है बुद्ध दे बाप बोखा को नगावे जन जी के से बोखा बुद्ध बाप जे ना आए तो किरे के दल जन जा जे ना आए तो आए तो पूर्ण प्रताप पायो सब गन नाम बल फूल सब पायो सब गन नाम बल फूल देव देवता ने को सुरे सदान मान को मे जगन को नाम को वे सदन की अत है नंद नरम के राग रूप में प्रभु नाम और करो नदी को
1: है
0: कहते महादीन कहते व्यास से प्रवीर कहते महादीन को लेने का सिद्धार्थ भी नहीं कहते हैं कहते हैं विचार चना पूर्ण रहना बाबा बहन विचार रहना बाबा निराधार रहना ये बताया है बार मेरा पूर्ण रहना बाबा निराधार रहना बाबा बताइए मेरे बार बहन बार बार बनाइए बाबा बहन बार बार पूर्ण ये बेटा सिद्ध बहन रूप तुम ही पर पूर्ण है ना सिखे ना मानी है बेटा सिखे ना सिखे ना मानी है जंत हूं न जात जा के पाप हूं न मारे तर के जरा जब प्रकार का सोच ना के अंदर मन को ने दे जो के सोच तर के जरा जानी को जान रहे तो वो मन को मगर रहने को तर के जानी है वो मन तर है तेरे जो मन पता रहे तर आज से को सारे जग सो तर को कर रहे के सिद्ध तर के साथ हो ना का हमरा है ना के साथ तर के साथ ना है विरक्त तर के बान है के बुद्ध को बुद्ध तर के बान है के पुष्ण दो स्वरूप है के वो मन को वो बन कर रूप रूप को रूप है को मत को बन कर रूप है को रूप को बनता है को मन को तारी है साधन को जानी में गुण रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्ध बाबा को बाबा है के बुद्ध हम सरकार के द्वारा देव को देव बनाने को द्वारा देव रहने के सब तरह को सार देव को देव जान को बतिया है मान को देव जहां जब बलती पर दई मां के कदम को बजन है तेज को बजन है मन दान को बने देव मन को बन को मन है के सुख है ना रही मन को मन है के विश्व को भरण है के पता को हरण है के सुख को भरण है के तेज को भरण है के सुख को पाइया है बार बार बार संग में बार योगी जत्र बिचरा बाबा बिचरा को जगा निरंजन प्रवीण राजन के राजा महासाज होंगे साजा महान के गोविंद को लोग राज धर या ब्रह्म छाल के कामन के कार या तो बुद्ध तक के राम में सिद्ध तर के साथ बुद्ध के काल है वो छाल के काठी के साथ रे और ताज के क्षेत्र क्षेत्र के छवर के छ सब काल है के बोल के हर से सिंहार में ही दासी हो से ना बांध के साथ के राम के चले सब से ना बोल के ताज के साथ द्वारा से बाबा का रूप के से राम बोल थोड़ा सो बड़ा नु बात ली के वाली रूप के चपास बांध रे को ध्यान दे से ज्ञान जंग बड़ के फरासी फरंगी फरासी जगे तुरंग नजर के बदन की दे रे की गाई जाता है के बदन की के लाली तो गाली खड़ी गाले जाता है कौन था के लाली तेरे नाम दे जाई है कौन है लाली तेरे नाम दे जाई है पूर्व पलाव काम रूप कम और सब बट सब बट जब आज हम जाई है अभी वजन का प्रताप भी जन रही है तेरे जाता है बिना की रब तेरे मन को ने पाया है प्रसाद प्रसाद अद्वैनास अद्वैनोस अद्वैनंत उपमादवोलंत उपमादवोलंत अभ्यसनात अजानबाहु सर्वपरमानाथ जल्पनंदन प्रफुल्ल प्रफुल्ल शोभावसर जहत प्रफुल्ल

काहे रे मंचत वह उदम जा आहिर हर जियो परिया सैल पथर मह जंत उपाय ताका रिजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुके काष्ट हरिया रहाओ जन पिता लोक सुत बंता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मन भव करिया ऊडे ऊड आवै सै को सा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया

जवां भई परापत मानख देहुरिया गोबिंद मिलन की इह तेरी बरिया अवर काज तेरै कतै नकाम मिल साध संगत भज केवल नाम शरण जाम लाग भौ जल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाओ जापता।

कह चौपई सम सत रह सहस भणी जय अर्ध सहस भुन तीन कहे जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र।

ही घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइया, कर शाम सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुरबान किता गुरु वेटो, जिस दियां ए वडियाइया, कह नानक सुन हो संतो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तत घर सभागे, घर सभागे शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया, धुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख होआ, तित घर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दोख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय।

0: मन विश्राम रहाओ।
1: प्रभ के सिमरन गर्भ नमसे, प्रभ के सिमरन कार पर हरे,
0: प्रभ के सिमरन दुश्मन टरे,
1: प्रभ सिमरत किस बिघन न लागे,
0: प्रभ के सिमरन आन जागे,
1: प्रभ के सिमरन पौ न व्यापे,
0: प्रभ के सिमरन दुख न संतापे,
1: प्रभ का सिमरन साध के संग,
0: शरण निधान नानक रंग,
1: प्रभ के सिमरन निध सिद्ध नौ निध,
0: प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तद्भुत,
1: प्रभ के सिमरन जप तप पूजा,
0: प्रभ के सिमरन बिन से दूजा,
1: प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी,
0: प्रभ के सिमरन दरगह मानी,
1: प्रभ के सिमरन होए सुफला,
0: प्रभ के सिमरन सुफल फला,
1: से सिमरे जिन आप सिमराए,
0: नानक ताके लागो पाए,
1: प्रभ का सिमरन सबसे ऊंचा,
0: प्रभ के सिमरन उदरे मूंचा,
1: प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे,
0: प्रभ के सिमरन सबके सोजे,
1: प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा,
0: प्रभ के सिमरन पूर्ण रासा,
1: प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, प्रभ जी बसे साध की रसना,
0: नानक जन का दास अंदसना,
1: प्रभ को सिमरे से तनमंते,
0: प्रभ को सिमरे से पतवंते,
1: प्रभ को सिमरे से जन प्रवान,
0: प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान,
1: प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे,
0: प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे,
1: प्रभ को सिमरे से सुखवासी,
0: प्रभ को सिमरे सदा विनाशी,
1: सिमरन के लागे जिन आप दयाला,
0: नानक जन की मंगेर वाला,
1: प्रभ को सिमरे से पर उपकारी, प्रभ को सिमरे से
0: सुहावी, प्रभ को सिमरे दिन सुख बिहावे,
1: प्रभ को सिमरे तिन आत्म जी।

0: प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन हर गुण बानी, प्रभ के सिमरन नेचर आसन, प्रभ के सिमरन चुनकार,
1: प्रभ सिमरन अंत न पार,
0: सिमरे से जन जिन को प्रभ मया,
1: नानक तिन जन सरनी पया,
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए,
1: हर सिमरन लग भेद उपाए,
0: हर सिमरन भेसि जति दाते,
1: हर सिमरन नीचो गुण जाते,
0: हर सिमरन तारी सब तरना,
1: सिमर सिमर हर कारण करना,
0: हर सिमरन क्यों सगर

0: देखो अपनी शोभा लो रे
1: संग हमें छोरे
0: देखो जन्म मरण ते डरे
1: साधना की सरनी परे
0: जिस जन को प्रभु दस प्यासा
1: मानता के बल बल जासा
0: सगल पुरख में पुरख प्रधान
1: का मिटे अभिमान
0: आपस को जो जाने नीचा
1: सोगनिये सबसे ऊंचा
0: जाट का मन हुए सगल किरीना
1: नाम दिन कड़ कड़ सीना
0: मन अपने ते बुरा मिटाना
1: सगल श्री साधना
0: सुख दुख जन समझे।

सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया सगल उद्यम मैं उद्यम पला सगल वाणी मैं अमृत वाणी।

जय प्रसाद तारू पर सुख बसे जय प्रसाद पीवे शीतल जला जय प्रसाद भोगे सब रसा।

0: जो चढ़ना सो अस्थिर कर्माने,
1: जो वसो दूर पराने,
0: छोड़ जाए जिसका आश्रम करे,
1: संसाई पर हरे,
0: चंदन लेप उतारे तुए
1: संग संग।

कहां भिक्षण पद गावे गुंग कह पिंगल पर्वत पर भवान करतार करुणा में दीन बेंती करे संग सहाय सुहावे नची बलुआ के ग्रह भी तरव से कर माने मने प्रतीत वै क्रोध काम क्रोध मोह यहाँ जुगत बिहाने कई जन

0: जिसकी बस्ती सागे रखे उसते चोगन करे निहार।
1: नानक साहिब सदा दयाल
0: माया के
1: सर परोवर जानने
0: बिरख छाया सो रंग लावे जो दिसे सो चालन हार बटाऊ सोजो नावे ने मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई
1: कृपा नानक आप ले
0: लाए मिथ्या तन मन कुटुंब।

सरस्वती जय प्रसाद छत्री अमृत खाए जय प्रसाद सुगंध तन लावे जय प्रसाद बसे सुख मंगल जय प्रसाद ग्रह जय प्रसाद रंग रस पोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे जय प्रसाद सुख सहज सोई जय जय प्रसाद तू सब को माने जय प्रसाद तेरो रे

0: यह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, यह प्रसाद तुझको न पोचे, जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे, जय प्रसाद भूखन पहरी जे, जय प्रसाद स्वस्थ सवारी, जय प्रसाद बाग
1: विलक्तना, मना
0: जिन तेरी मन बनत बनाई,
1: जिसे
0: त्याय जो एक रखे, जय प्रसाद करे पुन बोधान, जय प्रसाद।

0: जय प्रसाद सुने करन नाग,
1: जय प्रसाद देखे विस्मय,
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना,
1: जय प्रसाद सुख सहजे बसना,
0: जय प्रसाद हस्त कर चले,
1: जय प्रसाद संपूर्ण फले,
0: जय प्रसाद

0: आप जपाए जपे सो नाओ, प्रभ कृपा ते होए प्रगास,
1: प्रभु दया दे कमल बिगास,
0: प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए,
1: प्रभ दया दे मन उत्तम होए,
0: शरण निदान

0: अष्टपति साथ के संग पूजलो साथ के संग मुझे अभिमान साथ के संग मुझे प्रभनेरा साथ के संग पाए नाम रतन साथ की महिमा बरने कौन परानी साथ के संग गोचर मिले साथ के संग आवे बस पंचा साथ संग होए सब की रे साथ के संग न कतु धावे साथ के संग माया ते पिन साथ संग दुश्मन सब भी
1: साधु के संग
0: साथ संग किस्यो नहीं।

0: आपे जाने साथ बढ़ाई साथ के संग ना कभू धावे साथ संग बस गोचर लह साथ के संग बसे तानुचे साथ के संग जड़े सतरम साथ के संग पाए नाम निदान साथ के संग सब कुल उदारे साधु के संग सो तन पावे साथ संग धर्म राय करे सेवा साधु के संग पाप पलायन साथ के संग सरब कान गम
1: साथ के संग सफल जनम
0: साथ के संग नहीं किस कार
1: दर्शन बेटा होने
0: साथ के संग कडू खत हरे साथ के संग यहाँ हुआ सुहेला जो इच्छे सोई फल पावे पार ब्रह्म साधी बसे साथ के संग सुनो।

साथ के सन मिटे सब रूप साथ की महिमा भेद न जाने साथ की उपमा तय गुण ते दू साथ की शोभा का नाही।

0: वैष्णो सोजी सुपर सो प्रसन्न
1: की माया ते होए
0: कर्म कर तो वे न करम
1: इस वैष्णो का निर्मल
0: काहू फल की इच्छा नहीं बचे
1: केवल भगत कीर्तन संग रचे
0: मन तो अनंतर सिमरन गोपाल
1: सब पर होवत कृपा
0: आप गिरे भरे नाम जपावे
1: नानक को बे सो परम गत पावे
0: भक्ति पवन भगत का रंग
1: सकल त्यागे दुष्टा संग
0: मन ते बिनचे सगला परम
1: पूजे सगल पारम
0: सास संग पापा मन खोवे
1: भगवती की मत उत्तम हो
0: भगवान की टहर करे इतनी
1: मन तनर वे बिसन परे
0: हर के चरण ही देव सावे
1: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पा

0: की आज्ञा आत्मितावे
1: जीवन मुख सौका
0: जैसा हर कैसा उसो
1: सदानंद नहीं बियो
0: जैसा सुन तैसी उस माटी
1: जैसा मृत तैसी बिखाटी
0: जैसा मान तैसा अभिमान
1: जैसा रंग तैसा राजा
0: जो बरताए साई जुगत
1: नानक को पूरा कहिए जीवन मुख।

0: कई कोट कृपण कठोर कई कोट पर द्रव कोई रे कई कोट माया श्रम माये जी जी तुलावो तित लगना कई कोट सी जति जोगी कई कोट पंखी सर्प उपाये कई कोट पौन पानी बैसंतर कई कोट शशियर सूर नक्षत्र सगल समग्री अपने सूर तारे कई कोट राजस्थान मन सातक कई कोट किए रतन समुंद
1: नाना प्रकार
0: कई कोट किए चीर जीवे
1: कई कोट
0: जग किनर पिसार सब ते नेरे सबूते दूर
1: नानक का फल पत्रया पर
0: कई कोट पाताल के वासी।

0: कर देखे अपनी वड्याई प्रभावे मानुगत पावे प्रभावे बिन सास रखे प्रभावे ता पति तुधारे दुआसियां का आप स्वामी जो पावे सो कार करावे को मानुते क्या हो आवे
1: जो दिस पावे सोई करावे
0: इसके हाथ हुए ता सब कुछ लिए
1: जो दिस पावे सोई करे
0: अनजानत लिखिया मैं रचे
1: पन्ना
0: पर मैं पूरा जय दिस्तावे कर कृपा।

0: करे बख्शीश जो पिंड सब चीज की रास
1: पूरन ब्रह्म प्रभा
0: अपनी बनत आप बनाई
1: नानक जीवे देख बढ़ाए
0: अपनी
1: बल नहीं सहा
0: करण करावन सर आज्ञाकारी बपरा जियो
1: जो तिस पावे सोई पुंतियो
0: बबु ऊंच नीच में बसे।

0: वो लश्कर मानू को पर करिया
1: पीतर दंगा होए बिना
0: सबते आप जाने बलवंत
1: इनमें होए जाए पस
0: किसे न बदे आप अंकारी
1: धर्म राय किस करे कुल
0: प्रसाद जाका मिटे बिमान
1: सोच नानक दगे परवा
0: कोट कर्म करे हो तारे
1: श्रम पावे सगले मिल थारे
0: अनित तपस्या करे अहंकार
1: नरक रख फिर मेरा का
0: अनित यतन कर आत्म निद्रवे
1: अंदर गए को कैसे गवे
0: आपस को जो

0: सब सोए
1: जो किसकिनो सपने रंग
0: सबते दूर सब के संग
1: बुझे देखे करे विवेक
0: अपने का पे
1: मरे न बिन से आवे न जाए आप उपदेशे समझे आप
0: आपके
1: आपकी नो आप

0: संत के दुखन हार जा कटे,
1: संत के दुखन जब नहीं छुटे,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलीन,
1: संत के दुखन सब आते,
0: संत के हते को रखे न कोई।

0: जले
1: संतन के दुखन
0: तृष्णा में जले
1: संत
0: के दुखन तेज सब जाए
1: संत
0: दोखी का था को नाए
1: संत
0: का निंदक माँ ताई
1: संत
0: का निंदक माँ त्यारा संत का निंदक रास्ते ही संत के निंदक को

संत दुखी को डान लागे, संत दुखी मांग कारी, संत दुखी जन्मे मरे, संत दुखी को नाई ठाओ, संत दुखी अद्भीत टूटे, संत दुखी को ध्यान फरमाइए, संत दुखी

संत जोखी बिगड़ रूप हो जाए, संत जोखी सदा सहकाइए, संत जोखी की पूजे न आशा, संत के जोख न दृष्टे कोये, पया की तरह में टेक होए, सब गठ किसके ओकर निहार, प्रभ की उस्तत करो दिन रात, सब किछ वरते जिसका

0: जैसा सा तैसा दिष्टाया,
1: अपने कार्य में आप समाया,
0: सोदत सोदत सोदत सीजा,
1: गुर प्रसाद सब
0: जब देखो तब सब किच मूल,
1: नानक सो सुखम सोई असो,
0: न किच जन्मे न किच मरे,
1: आपन चलत आप
0: आवन जावन दृष्टन दृष्ट।

0: 1852
1: सगल संसार त्रय तिन मन
0: प्रभु के सेवक सगल उदारण
1: प्रभु के सेवक दुख विसार
0: आपे मेले कृपा
1: उनका सब जप है निहार
0: उनकी सेवा सोई लागे
1: जिसनो कृपा करे वड़पा
0: नाम जपत पावे विश्राम
1: नानक तिन पुरख गौतम
0: जो कुछ करे सुप्रभ के रंग
1: सदा सदा बसे
0: सह सुभाए होवे सोए
1: करने हार बचाणे
0: प्रभु का किया जन्मी ठिकाना
1: जिसके
0: उपजे तिस्माए समाए
1: सुमिरानो बने
0: आपस को

0: सत सचता
1: जो कुछ करे सोई सुख मान
0: भूला काहे फिरे जान
1: कौन बसताई तेरे संग
0: लपड़े और असलोगी पतंग
1: राम नाम जपी देव माए
0: नानक बसे थी कर जाए
1: जिस वक्त को रहन तु आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: ताजब ईमान रहो मन मोह
0: राम नाम हृदय में
1: लाख खेप सुनते संग

0: जो तोए तो
1: को अपना जियो,
0: साथ की दूर करो इस नाम,
1: साथ ऊपर जाइए,
0: साथ सेवा बड़ भागी पाइए,
1: साथ संगर्ण
0: अनिल बिरंते साथ दूर रखे
1: और
0: गई संते।

0: राष्ट्रपति अविनाशी ब्रह्मन मेरा
1: मानो की दुख
0: किसे परे नाही किछ कोए आपे बिना आपे दाना पार ब्रह्म परमेश्वर।

0: नाम के धारे अस्पताल,
1: नाम के धारे सगला काल,
0: नाम के धारे पुण्या सब भवन,
1: नाम के संग
0: कर कृपा जी सपने नाम लाए, रूप सज्जा का सत्य स्थान, कटू सत सज्जा की वाणी, सत्क्रम जा की रचना सत्य, सत्करणी निर्मल निर्मली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, सत वचन साधु उपदेश, सत तीरत बुझे जे कोए, आप सत की या सब सत्य, जिसकी शिष्य कर निहार, करते कि मित न जाने किया, दुश्मन विषम पहे बिस्मार, प्रभ के रंग राज जन रहे, कोई दाते दुख काटन हार, जन का सेवक सोवण पागी,

0: सच
1: राष्ट्रपति चरण सत्सत प्रसन्न हार
0: पूजा सत्सत सेवदा
1: दर्शन सत्सत पे कन्हार
0: नाम सत्सत ध्यावन हार
1: आप सत्सत सब तारी
0: अपे गुण
1: सब सत्सत प्रवक्ता
0: सुर सत्सत जसंदा
1: पूजन हार को सत सब होए
0: नानक सत्सत प्रसोए
1: सत रूप दे जिन मानिया
0: वरण करा दिल मोल
1: जाके जे विश्वास प्रभाया
0: सत्रिया दिस मन प्रकाया
1: ते निरपो होए बसाना
0: जिसते उजास माए
1: बस माइले बस गड़ाई
0: ताको बिन ना कहना जाए नारायण ले नानक गए
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक के मन प्रति
0: ठाकुर के सेवक के नेम
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: का सेवक नाम के रंग
1: सेवक को प्रपालन हारा
0: सेवक की रखे निरंकार
1: सो सेवक जिस दया प्रवतारे
0: सो सेवक सा
1: अपने जन का पर्दा टाके
0: सेवक के सर पर
1: अपने दास को देव बढ़ाई
0: अपने सेवक का नाम जपाई
1: अपने सेवक की आपत रखे प्रभ के सेवक को न पोचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया निकी कीरी में कल राखे जिसका सास न काटत आप मान जतन करत बो पाप मारे न राखे अवर न कोई काहे सोच करे रे प्राणी बारंबार बार प्रभ जपिए नाम तंजिन गुर मुख पाया नाम तन नाम और रूप रंग
0: नाम सुख नाम
1: नाम रस जो जन तृप्ता ने
0: नाम समाने
1: जगत बैठ सो जन

0: अष्टपति सतगुरु सिक्की करे प्रतिपाल
1: सिक्की
0: गुरदुर मत मरी रे
1: सतगुरु
0: सिक्के बंधन काटे सतगुरु सिक्को नाम तन दे सतगुरु सिक्का हलत पलत सवारे
1: सुखे
0: ग्रह सेवक गुरे
1: आपस
0: को कर किच न जनावे मन बेचे सतगुरु।

जेबा एक उस्तत अनेक काहू बोल न पोचत प्राणी मेरा हार निर्वैर सुखदाई अनेक पगत बंधन नित करे सत परिहारी सतगुरु अपने ए हरस पावे।

0: अष्टपति संजना मिल करो विचार और समीत
1: विचारो
0: प्लब समर्थ
1: कर गो नाम
0: वेतन संचो हो वो भगवान
1: संजना का निर्मल मन
0: एक आसरा को मनमाए
1: जिस
0: जन को चार कुंड उड़दावे
1: जिस
0: को जिस बाचे मीत जिस शोभा को करे बली करनी अनिक पावी रोग न जाए शर्म दान मेर नाम निधान मन पर बोधो हर के नाये ताको बिगन न लागे कोए कल ताती ठाडा हर नाओ बोबिन से पूर्ण होया चित घर जाए बसे अबनासी

अनेक पाप न छुटन हारे साकी भगत करो मन लाए संग न चालस तेरे तना सुत मीत पुतलां बरबनिता राज रंग माया विस्तार असस्ती रथ सवारी जिन दिए जिस बुझे ना बिगाना की मतु लहनी हर की भगत करो मन मी चरण कमल राखो मन माहे आप जपो वरा नाम जपावो सार भूत सत हर को नाओ गुण गावत तेरी उतरस मैं ओए अचिंत बसे सुख नाल।

0: जो जपै सो होए पुनी हम निर्गुण यार नीच जान
1: नानक तुमरे
0: सर्व पै कुन मुकद मोक पाए अनेक राज भोग बड़े आई वो भोजन का प्रसंगी
1: रसना जपिया
0: पलीशु करनी सोबत।

0: बोध प्रभ केवल तुनी जब के हर अगम पार जब निगम प्रभ सहस सुभाई जब आपे आप अपनी जोत तरे आपन चली सब कर निहार जब पूरण करता प्रभ सोए जब विगत गोचर प्रभ का जब नाग निरंजन गोचर का दे अपन आप आपी चढ़ जा जय निर्मल पुरक पुरक पत होता जय निरंजन निरंकार निर्वाण जय स्वरूप केवल जगदीश जय जो स्वरूपी जो संग समावे करण करावन करने हार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई
1: जय
0: जब अपन आपा पुकार।

0: जिस प्रभ राखे तिस नाही दू
1: नाम मुझे बदनाम हो
0: चिंता जाए मुझे अहंकार
1: संतो कोई न पहुंचना
0: श्री रूप ठाठा गुरसुरा
1: नानक आगे कारज पूरा
0: मत पूरी अमृत जाती दृष्टि चरण कमल जाके अनु काम सेवा सेवक प्रवान जिस मन बसे सो होत निहार।

दयाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, उत्तम श्लोक साध के बचन, सुनत कमावत हो तुदार, सबल जीवन सबल ताका संग, जय जय शब्द नाथ बाजे, प्रगटे गोपाल महात्य माथे, शरण योग सुन।

0: कुर राजा कुर प्रजा कुर सब संसार कुर मंडप कुर माड़ी कुर बसनहार कुर सोना कुर रूपा कुर पनहार कुर काया कुर कपड़ कुर बपार कुर मिया कुर विवेक भय खा कुर कुड़े ने हलका सिरा करतार कसनाल कीचे दोस्ती सब चलनहार कुड़ मिठा कुड़ माखे कुड़ डोबे पर नानक खाने बेंती तलवाज कुड़ कुड़ महला पहला
1: सचता प्रजन जारी दे सच्चा होए कुड़ के बुल त्रेतन त्रे हच्चा तो हो सचता प्रजन जा सचत्रे प्यार ना हो सुन मन रस्य ता पाए मुग दुआ सचता प्रजन जा जुग जाने जीव तरत का सात के विच दे करता बे हो सचता पर जाने जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किच पुन दान करे सचता पर जाने जा आत्म तृत करे निवास सतगुरु कुछ पे बहर करे निवास सच सगना हो दार पाप कटे तो नानक उठाने बेनती जिन सच पल ले हो